तेरी रजा जिवें है वो परवान है, ओदे विच मैनू कोई हक नहीं के मैं कुछ हुक्म अदूली करा। ये एक संसार दे सामने नमूना पेश कीता है कि सिदक तो नहीं डोलना जालम, भावे जिन्ना मर्जी जुलम करदा, आखिर जित नाम सिमरन और सच दी हक दी हुंदी है। हजूर गुरु नानक पातशाह जी का फरमान है, कूड़ निखुट नानका ओड़क सच रही। ये झूठ दे बदल ये सदा अस्थिर नहीं रहिंदे, लेकिन सच दी आवाज सदियां तक बल्कि जुगां जुगांतरां तक बुलंद रहिंदी है, और उस सच दी रोशनी दे विच अनेकां ही राही उन्हां नूं मार्गदर्शन प्राप्त हुंदा है। तो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी अकाल पुरख वाहिगुरु दे भाणे विच किवें रहना है,

कोई भरोसा नहीं इस शरीर दा। नाम दा तुलहा तैयार कर जिदे तो तू चढ़ के पवजल पार कर जावे। साहब कहंदे ने समा किसे दी इंतजार नहीं करदा।

सतगुरु कहंदे ने देह सदा नहीं रहनी, जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां इदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

सुरत ना श्रवणन बचन मधोकी है अंग अंग हीन दीन कैसे बरमाल करो मस्तक नाहे भाग

मन में ना गुरमत, गुरमत में ना मन, नेचल होए ना उन मन लिवलाइए, अंग अंग भंग रंग रूप।

सतगुरु कहंदे ने सुमन को जन्म जन्म की मल लागी, ते जन्मा जन्मा दी मैल नाले मन काला भी हो गया, ते मैल नाल पारा भी।

जे तरना है भवजल तू ते मन भी सच्चा होवे ते जो तू मुख तू कमे ओ भी सच्ची होवे जो कुछ तेरे अंदर है ओही बाहर होवे ताके संसार नू ते तू खुश कर लेगा पर जदू मन भी सच्चा होवेगा ते मुख विच भी सच बोलेगा ते फिर निरंकार भी सच्चा सच तेरी जेगा ओ सच दा उपाशक सच वंडन वाला सच दा प्रचार करन वाला नगरी नगरी ते द्वारे द्वारे भाई साहब भाई गुरदास कहंदे ने चढ़िया सोधन धरत लुकाई भाई मरदाने नू नाल लैके जगत दे मालिक कहन लगे मरदाने आ चल तैनू ऐसे इंसान नू मिलावा जेड़ा कम ता होर करदा है लेकिन उदे मन विच भाई मैं धर्म दा कम पिया करना मैं सच्चे नू रिझा लवांगा ते सच्चे नू रिझा के मैं शायद तर भी जावां

विश्राम दी भी जरूरत नहीं, दो घड़िया बहने गुरमुखा फिर असा चलते बनने, पर भोजन तो कर लो ना। आवेखो कई लोग ब्राह्मण ऋषि मुनि तपी भोजन पे करते ने, यथाशक्त सेवा भी करदा। ए अज नहीं, ए रोज ही ऐसा चलदा। सतगुरु कहन लगे भाई फिर तो तेन कोई तगड़ी कमाई होवेगी, की कम करते हो तुसी? जिस वेले आखिया ना की कम करते हो, कदे अपने वाल वेंदा है, कदे बाबे वाल वेंदा है।

सतगुरु कहन लगे फिर कदे आवांगे ते छकांगे, हुण असी चलने हैं। पर जे तू चोरी ना करें ते चंगा, ए माड़ा काम है। कहन लगे बाबा एक होर मैं सच बोला, ए चोरी मेरे कोलू छुटनी कोई नहीं। एक होर मैं सच बोलदा, चोरी नहीं मैं छड़ सकदा। सतगुरु कहन लगे ना छड़, पर तू सच बोलिया ना, सदा सच बोली, असी ते जा रहे हैं, वादा कर सच बोलेगा। हां बाबा मैं वादा करदा सच बोलांगा। सतगुरु कहन लगे दो बचन होर साडे चेते रखे, गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। सच बोली, गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। ए तीन बचन चेते रख, भाई करी जा चोरी, जे तू नहीं मुड़ सकता।

एक दिन मन विच ख्याल आ गया भाई चलो राजे नू चल के लुटने आ, वो केड़ा गरीब है, शाही पोशाक पहन ली, घोड़े ते चढ़ बैठा ते रात राजे दे महलां नू तुर पिया। रस्ते च सिपाही ने रोकिया, भाई तू कौन है, इस वेले कित्थे जा रहे हैं? ते बाबे दा बचन चेते आ गया, फिर सच बोली, मैं पूछिया तू कौन है? कहंदा तेनू नहीं दिस रहा मैं कौन, मैनू नहीं दिस रहा तू कौन है? मैं चोर हां। हुण पहरेदार सोचण लगा भी चोर भी कदे कहंदा मैं चोर हां, ये राजे का कोई खास निकट वर्ती होना है, जे मैं रोक लिया तो सवेरे होर ना कोई बिपता खड़ी हो जाए, जा भाई नंग जा। जा अंदर वड़िया, दीवे बुझा दिते, हीरे जवाहरात पुखराज नीलम सोना चांदी पांड बन ली। बंदे दा मन बड़ा लालची, होर बहिंदा भी कुछ होर मिल जाए, हनेरा सी, हाथ मारदे आ मारदे आ, टोंदे आ टोंदे आ, किसे गिल्ली जी चीज नू लगा ते ओ जबान नाल लाया ते ओदे विच लून सी। बाबे दा बचन चेते आ गया भी लून खा के हराम नहीं करना। भाई साहब ने एक बड़ी सुंदर बात कही है।

हैरान हो गया भी है ये की होया, कोई चोर आया। सब कुछ इकट्ठा करके उस तरह पंड बन के छड़ गया। गल की सवेरे इलाके दे सारे बदमाश कट्ठे कर ले ते लगी मार पैन। हुणे सोचदा है इहदा नां इतिहास ने भूमिया करके लिखे, भूमिया सरदार। जमीन भी बड़ी सी, बाबे दा वचन चेते आ गया भी गरीब मार नहीं करनी, ते सोचदा गरीब मार ते हो रही है। भूमिया करे तू ते परे कोई होर, जाके पेश हो गया फिर राजन, ए सारे नु छड़ दे मैं तेरा चोर। भूमिया सरदार तू किवें हो सकता है? नहीं राजन, मैं ही तेरा चोर हाँ। कदे चोर भी को कहिंदा मैं चोर हाँ? ये गल की है? सारा कुछ सुनाया भाई, मैनू मेरा मालिक मिलिया, आप नारायण कला तार जग में परवरियो, संसार नू छेद देन वाला, गरीबां ते रहमत दी छां करन वाला, आप चल के आया मेरे घर, मैनू सिखिया दे के गया। सच बोली लून खा के आराम ना करी, राजा मैं तेरा लून खा लिया सी, ते गरीब मार ना करी। बड़ा समझदार सी, कहन लगा मैं इनू सजा की देनी है, सजा देन वाला तेनू सजा दे गया। भूमिया सरदार मैनू भी मिला, उन्हू मैं भी ओदे दर्शन करके अपना जन्म सवार लवा। वो किथे मिलनगे? भूमिया कहन लगा उन्हूं याद कर प्यार नाल, वो आपे आवेगा जिवें मेरा बेड़ा तारिया, जिवें मेरे गरीब ते नजरे अनाज कीती है तेरे ते भी करेगा। फिर मैं की करां? तू प्यार नाल जप ते प्यार नाल

देहरा मसीत सोई, पूजा हो निवाज होई। देहरा और मसीत, पूजा अते निवाज, इन्हां नूं एक ही समझो, क्योंकि जेड़े इन्हां विच फर्क समझदे ने उन्हां दे मनां विच ही नफरत रहिंदी। सदियां तों हिंदू मुसलमान इस मसले ते लड़दे झगड़दे आए, फर्क समझ के। कुछ लोग कहंदे ने कि सिख धर्म वक्खवादी है, पर सिख धर्म वक्खवादी नहीं, ये सिख धर्म का ही उपदेश है। धर्म दे नां ते लड़न वालेओ सुनो, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तुहानू की उपदेश करदे ने। ना मंदिर

राक्षस, जस, गंधर्व, तुरक, हिंदू नाम वक् हैं, पहरावे भी वक् है, देश भी वक् है, और इन चीजों का असर इंसान से होंदा है। पर सतगुरु जी कहते हैं अगर आप मन विच विचार करिए तो सानू किसी विच फर्क नजर नहीं।

उपदेश कर रहे हैं। अल्लाह अपेक सोई कुरान ओ कुरान ओ ही हिंदू कुरान पढ़ते है, मुसलमान कुरान पढ़ते है, मुसलमान अल्लाह नु याद करता है, हिंदू राम नु याद करता है। ते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे ने अल्लाह दा नाम लेन वाले है, कुरान शरीफ पढ़न वाले है, मुसलमान नु ए उपदेश, हिंदू नु की उपदेश है? कुरान पढ़न वाले हिंदू है, राम नु याद करन वाले हिंदू, अपने मन विच ए विचार कर। एक बंदा मसीत विच बह के निवाज पढ़ता है, वो अपने अल्लाह नु याद करता है। एक ब्राह्मण मंदिर विच बह के पूजा करता है, वो अपने परमेश्वर नु याद करता है। टंग दोनों दे अलग ने, एक निवाज पढ़ता है, एक पूजा करता है, पर ए सोचे है दोनों दा मकसद की है? मुसलमान अल्लाह नु याद कर रहे है, हिंदू अपने राम नु प्या याद करता है, मकसद दोनों दा।

अज दे नहीं सदियां तो चले आ रहे हैं। क्यों कुछ लोग धर्मी अखवांदे हैं पर धर्मी होंदे नहीं। धर्मी इंसान कदे किसी ते जुलम नहीं करता। धर्मी इंसान किसी का निरादर नहीं करता। भाई गुरदास जी अपनी वार विच बयान करते हैं कि ये देखो सच नूं छड़ के लोग किस तरह आपस विच लड़दे मरदे हैं। भाई साहब जी बयान करते हैं चार वारन चार मजहबां

ब्राह्मण शूद वैश्य और हिंदू और मुसलमान दो वटिया कौमा और दो नादाई झगड़ा सदियां तू चलिया आ रहे है। पर गुरु नानक दे घर दा उपदेश की है कि जेड़े लोग रब दे नां ते लड़दे हन ओ पुल्ले और पटके हुए लोग हन। भाई साहब जी बयान कर दे चार वारन चार मजहबां

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक ने, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते, मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने, अगे भाई साहब की कहते हैं।

और कतेबा नू भुला दिता। वेद की पूजा हिंदू करता है, कतेब नू मुसलमान पूजता। भाई साहब जी कह रहे ने वेदा और कतेबा का उपदेश भुला दिता है और दुनिया जिहड़ी है देखो लालच विच फस के शैताना दे राह ते चल पई है। शैताना दा राह नफरत ईरखा दुबदा और झगड़े।

सच किनारे रह गया, सच एक पासे रह गया। ब्राह्मण और मुलाने आपस विच पै लड़दे मरदे ने। भाई साहब जी कह रहे ने, अगर इंसान सच नू ना छड़े, सच पल्ले रखे, ते कदी भी झगड़ा नहीं होंदा।

अल्लाह दे राम दे नाम नु समझिया नहीं, झगड़े पाले और जेड़ा ये जन्म मिले है झगड़िया में चुकवा लिया और आवा गाउण दा चक्कर जेड़ा है ये उस तरह ही।

इस पौड़ी दे विच भाई गुरुदास जी ने इस्लाम धर्म का जो असूल है उहदे बारे दस्सिया कि मुसलमान वास्ते रोजे ईद निवाज जरूरी इन्हां दे पीर पैगंबरां दा यह उपदेश। पर जिस वेले मुगलां दा राज होया हिंदुस्तान ते तां औरंगजेब जिहड़ा कि एक जालम बादशाह सी उसने यह हुक्म कीता सी कि हिंदुस्तान विच हिंदू धर्म नहीं रहन देना। तां पंडित कृपा राम ने आनंदपुर साहब आके गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार पुकार कीती, साडे हिंदू धर्म दी रक्षा करो। तां गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर दे के हिंदू धर्म दी रक्षा कीती। और गुरु नानक साहब दे अवतार तो पहला भी ठाकुर द्वारे ढाए जांदे रहे भाई गुरुदास।

वड़े वड़े राजे, वड़े वड़े नवाब, वजीर, इन्होंने अपना की काम बना लिया। राजभाग मिल गया, लोगों नूं आपस विच लड़ाना, और जद भी पता लगना किधरे सोहनी औरत है, उस नूं हथियाण वास्ते हजारा बंदियां नूं लड़ाई दे मैदान विच मरवा देना। राजियां दा, वजीरां दा, नवाबां दा ये काम रह गया, औरतां वास्ते लड़ाई झगड़े, हजारां लोकां दा

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसे न दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे। आप पावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख दे।

और दूसरे पास से ब्राह्मण ने उपदेश कीता, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे। जिड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे, असी ते ओनू ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वो फिर जिद भी जिस पासे भी देखेगा, वो जिधर भी देखेगा ओनू ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है, हर पासे परमेश्वर है, ते फिर किहदे नाल झगड़ा ते किहदे नाल लड़ाई, किहदे झगड़े खत्म हो जाणगे। और गुरु घर दा उपदेश है, फिर ते इंसान इहो ही होवेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, किहदे नाल लड़ा सारे ते

ऐसा उपदेश गुरबाणी दा अपने धर्म च पक्के रहो। तुसे जिस धर्म नूं भी मनदे हो पर असल विच धर्मी उह है जिहड़ा सब नाल प्यार करे, क्योंकि धर्मी किसे नाल नफरत नहीं कर सकता। गुरु घर विच सिख धर्म विच अणख नाल जीवना, धर्म दे कीर्त करनी, नाम जपना और वंड छकना यह उपदेश है। और यही उपदेश सारिआं वास्ते सांझा है। अणख नाल जीओ, अपने धर्म च पक्के रहो। पर धर्मी होण दा मतलब यह नहीं कि आपां दूसरिआं नूं माड़ा कहीए या दूसरिआं दी निंदिआ करिए। कमियां हुंदिआं हन, पर उन्हां कमियां नूं दूर करना इंसान दा फर्ज बनता। जिस वेले धन गुरु नानक साहब दा अवतार होया, ए झगड़े उस वेले भी सन। ते गुरु नानक साहब जी महाराज जिस वेले मुल्तान देश गए, पीरां फकीरां दे नाल ज्ञान चर्चा हुई। पीरां फकीरां ने गुरु नानक साहब नूं सवाल कीता, पुछन गल ईमान दी, काजी मुल्ला इकट्ठे होए, वड्डा सांग वरताया लख ना सके कुदरत कोई। धन गुरु नानक साहब नूं सवाल कीता, ऐ बाबा नानक तू सारिआं दा सांझ है, तैनूं मुसलमान भी मनदे ने, तैनूं हिंदू भी मनदे ने, पर सानूं इक गल दा जवाब दे।

गुरु साहबान ने, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसी फिरके के खिलाफ नहीं, वो जुलम के खिलाफ लड़ाई सी। जुलम करने वाले का कोई धर्म नहीं आता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुलमिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज में हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन, जिन्हां ने समझिया कि यह इंसानियत के भले वास्ते लड़दे ने। हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुल्म करन वाला और एक जुल्म नूं रोकण वाला। जिहड़ा जुल्म करदा है उहनूं फिटकारां पैंदियां ने, ते जिहड़ा धर्म की रखिया वास्ते हथियार चुके, लोकां दे भले वास्ते हथियार चुके, जुल्म दे टाकरे वास्ते हथियार चुके, दुनिया हमेशा उन्हां दी पूजा करदी है। तो आओ भाई आपां भी महापुरशां दे राह ते चलीए और ये जिहड़ा उपदेश है इस नूं अपने दिल विच थां लईए, उपदेश ते चलण दी कोशिश करिए। गुरु साहिबां दा उपदेश अणख नाल जीवना, धर्म दी किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, जिहड़ा इन्हां गल्लां नूं मन लवेगा।

आख्या फरमांदे ने। आम करके दुनिया कन रस विच उलझी है, ये आत्म रस दी खुराक है, आत्म रस जै जाने ही सो है खालस। पाख्या आखदे ने

0: नवी म्यूजिक मेमोरीज इंडिया फगवाड़ा कंपनी वालों पहले शब्दों की कैसेट संगतां दे वास्ते भेंट की है। सच्चा पातशाह कृपा करे कंपनी के मैंबरां नूं अपने चरणों का प्यार सेवा करन दा बल बख्शे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You are listening to SikhNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

जगत गुरु बाबा धन धन साहिब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जगत दे कल्याण करता मनुखता दे हामी दुखियां ते गरीबां नूं हिकड़ी नाल लाउण वाले संसार दी कल्याण करन वाले सतगुरु सच्चे पातशाह सोरठ महला पहला विच कृपा करदे ने।

मैं क्या मांगू कि चिथिर न रहाई। तू दाता है, तेरे कोल सारिया दाता ने, तू दाता दा मुजस्मा है। पर सोचना तो मैं है भाई मैं मंगा की। हे मालिक मैनू ओ दात दे जड़ी सदा थिर रहे। करता तू मेरा जजुमान एक दखना हो तै पै मांगू। देवो अपना नाम मैनू अपना नाम दे। ता नाम किदे कोलू मंग रहे ने जेड़ा जर्रे जर्रे विच रमिया होया, जेड़ा घट घट रव रहा बनवारी। ता साहिब सच्चे पातशाह दी महान पवित्र बाणी दा ए पवित्र